संतरा वचन विश्वास मुकिन है जो खरेखर वचन उन्हें स्वीकार आज के लिए आत्मा विचारो जय स्वामीनारायण प्रभु ने गोद माँ समय जाए आत्मा विचारो शुद्ध थी जाए आत्मा विचारो सुखी थी जाए विकारो ही रहित प्रभु ना अस्खलित ब्रह्मानंदमय लय थाय आवा संतो ना होत तो सुथात मोटो प्रश्न है।